काला जुड़छन दुबई हाथ जहाँ छपाला थरोक न सकने कुनमुर खाई उड़ान भरने मन पंख लाई उत्प्रेरणा कई थलबा टलिन्छु स्वतन्त्र।

जुड़छन दुबई हाथ जहाँ छपाला थरोक न सकने कुनमुर खाई उड़ान भरने मन पंखलाई उत्प्रेरणा कई थलबा टलिन्छु स्वतन्त्र पंछी नममा म घुम्छु खिया हुने बन्दुक चाहिँदैन च्यापिन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: यो बी एफ बी एस कुल कर रेडियो हो।

सुबोध केसीको माया नै माया छ भन्ने गीत सुने श्रोता प्रभातकालीन कार्यक्रम आवाज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ म धनराज राईको साथमा। अब आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दरभावको जानकारी लिन तर्फ लागौँ। सुरु गरौँ अमेरिकी डलरबाट एकको खरिद दर 153 रुपियाँ 1 पैसा, बिक्री दर 153 रुपियाँ 61 पैसा। युरो एकको खरिद दर 174 रुपियाँ 30 पैसा, बिक्री दर 174 रुपियाँ 98 पैसा। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर 202 रुपियाँ 78 पैसा, बिक्री दर 203 रुपियाँ 58 पैसा। स्विस फ्रान्क एकको खरिद दर 184 रुपियाँ 68 पैसा, बिक्री दर 185 रुपियाँ 41 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर 107 रुपियाँ 47 पैसा, बिक्री दर 107 रुपियाँ 89 पैसा। कनेडियन डलर एकको खरिद दर 108 रुपियाँ 18 पैसा, बिक्री दर 108 रुपियाँ 61 पैसा 61 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिद दर 119 रुपियाँ 76 पैसा, बिक्री दर 120 रुपियाँ 23 पैसा। जापानिज येन 10 को खरिद दर 9 रुपियाँ 73 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 77 पैसा। चाइनिज युआन एकको खरिद दर 22 रुपियाँ 79 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 88 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिद दर 40 रुपियाँ 75 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 91 पैसा। कतारी रियाल एकको खरिद दर 42 रुपियाँ 1 पैसा, बिक्री दर 42 रुपियाँ 18 पैसा। थाई बाट एकको खरिद दर 4 रुपियाँ 58 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 60 पैसा। युएई दिरहाम एकको खरिद दर 41 रुपियाँ 66 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 82 पैसा। मलेसियन रिङ्गित एकको खरिद दर 37 रुपियाँ 56 पैसा, बिक्री दर 37 रुपियाँ 70 पैसा। साउथ कोरियन वन 100 को खरिद दर 11 रुपियाँ 30 पैसा, बिक्री दर 11 रुपियाँ 34 पैसा। स्वेडिस क्रोनर एकको खरिद दर 15 रुपियाँ 43 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 49 पैसा। डेनिस क्रोनर एकको खरिद दर 23 रुपियाँ 31 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 41 पैसा। हङकङ डलर एकको खरिद दर 19 रुपियाँ 51 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 58 पैसा। कुवेती दिनार एकको खरिद दर 497 रुपियाँ 27 पैसा, बिक्री दर 479 रुपियाँ 22 पैसा। बहराइन दिनार एकको खरिद दर 405 रुपियाँ 89 पैसा, बिक्री दर 407 रुपियाँ 48 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल एकको खरिद दर 397 रुपियाँ 42 पैसा, बिक्री दर 398 रुपियाँ 98 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर भाव पूरा भयो।